0: टिक टिक रेडियो सुरभि टाइम चेक स्टूडियो लो टाइम 10 PM आयुष्मान भवा आरोग्य में असलैन ऐश्वर्यम योर डेली डोज ऑफ गुडनेस मी आरोग्यान्नि कापाडुकुने सूत्रालु
1: आयुष्मान भवा एवरी फर्स्ट एंड थर्ड संडे एट 5 PM ओनली ऑन 107.9 FM HD3

0: listening to Radio Surabhi 107.9 FM HD3.
1: अरे इन पूरा भाई नहीं को अमेरिका ये सब अच्छी नगी मंची कड़ी ये लो सिगरेट वाक की तो आ रही थी
2: सुरा पानम तो नहीं सोपती की दावा दीपाला नहीं